0: कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है, ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें आबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with the principles of pro-people, pro-active and good governance. He said the country is progressing rapidly on the reform express and institutions conducting examinations must also undertake reforms in line with the country's needs. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi, the Prime Minister stressed the need to bring young people into public services who are driven not by public office but by public service. The nation is paying homage to Father of the Nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. In her message on Gandhi Jayanti, President

रंगम ग्रहण कुसनी सुखनी आरो सुरहाउनी निनी आमी आवारो अकुसे सुसुंग सै ए साइसरी नथिम नमंजो रंगमनी अपनी हुरंगेन जसिन रसान नथिम नमंदा आपरो आकाशवाणी टुरा केंद्र थाकिया।

0: स्थानीय सिसे नाथम नमाजा बारों दुईता साय नेपोलियन कुसानी सुमने हुरंगे नांग जे फुइजो आंग रंगसमों एसाय सिरे सुक्त्रा आरो सुरात्रा धीरास बनाय आरो बारने आंग मानसा गोसो कुंगुरी नेपोलियन कुसानी सुकने आरो सुरहौनी एसाय सिरे गरेगरे नापारोंनी जासिंनी कसो अनुष्ठानने अकोटा फुराइजो सुपनिन पेलेमटुंनि कामना रेक्टो आरो तिनिनि अनुष्ठान थाखाय एन बिदाय लाथ' सपनान कांचिकन नमस्कार
1: नासिमा कोच कम्पोजि प्रोग्राम नदन दन दन कोच प्रोग्राम नं कोखना सोहा आरो ये प्रोग्राम नदन सोगमन समय बा यनन बना हा दक्टर टेक्सानि जामन उसनि बा जोहान दिल्ली स्टेशन नि को पत्सका पा हिंदी को बोला कोखना सोहान बक्सा स्नि बजे मिनट पर इंग्लिश को बोला को खना सोना मन गेन यान आकाशवाणी टुरा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभा हो रही है। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर राष्ट्र श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। इससे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। शास्त्री जी किशोरावस्था में ही देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे और वर्ष 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। बाद में उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस ने लोगों को अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाने, अतिरिक्त समय लेकर चलने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी देश की आवश्यकता के अनुसार सुधारों पर काम करना चाहिए। नई दिल्ली में कल संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि परीक्षा का आयोजन युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को नमन किया है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक दिवसीय विश्व कप 2027 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप का आयोजन 2 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच किया जाएगा। भारत अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with the principles of pro-people, proactive and good governance. He said the country is progressing rapidly on the reform express and institutions conducting examinations must also undertake reforms in line with the country's needs. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi, the Prime Minister stressed the need to bring young people into public services who are driven not by public office but by public service. The nation is paying homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. In a message on Gandhi Jayanti, President Draupadi Murmu said, Mahatma Gandhi's message of peace and non-violence has become even more relevant amid wars and conflicts in several parts of the world. She paid tributes to Mahatma Gandhi and said, his life and ideals are widely respected across the world. She expressed confidence that India is advancing towards the goal of Viksit Bharat by 2047. A Sarva Dharma Prarthana Sabha will be held at Mahatma Gandhi Samadhi at Rajghat in New Delhi. Traffic police has issued a traffic advisory in view of Gandhi Jayanti at Rajghat and the 122nd birth anniversary of former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat today. Special Gram Sabhas have been convened across the country today on Gandhi Jayanti to deliberate on governance reforms, strengthening panchayats and improving public services in rural areas. The Rural Development Ministry said the meetings will also mark the launch of the People's Plan.

असीमा रोशनी फिल्मोनी मैंने तुझे जान लिया गीत को खना सुहा राम असीमा ना मक्खी फिल्मोनी अनुज गुरुवारानी गप्पा लावा लावा गीत को गा मतंस कहेंगे।

0: जरूर पूछे उनकी सीख
1: और हमेशा हमारी फिक्र करना। वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है
0: और क्लेम करना मुश्किल होगा।
1: बहुत ही आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
2: Nasimang makki filmoni lava lava git ko knaswaha tao nasimang na I love New Year filmoni shan aro tulsi kumani ngapa halki halki git ko gamatang skainga.

होता है तुम तो रखाना, इसे कहते हैं कभी अब हमसे, तुम्हें भी ऐसा लगता है जरा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार हैं। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला एकल तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांव के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
2: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचाने की श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि यह सुधार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीव जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews दिल्ली और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
4: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
5: न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st सेंचुरी इंजीनियरिंग वंडर। फॉर मेनी डेकेड्स There was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
4: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से

0: सेवन से निकल रहा आज गोवा में गोवा प्रेस ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा प्रेस ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोबर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
2: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी। 2 करोड़ की क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमई के लिए और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वीं एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मुहूर्त की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
3: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मित मच्छर के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है पॉकेट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मित मच्छर की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मित को पूरी दुनिया ने किया सलाम, जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जाँच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा सरकार माई बाप नहीं नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोक सत्य की सुर्खी है महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति, गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक दे दिया है तेजस संग उड़ान, फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले याद आया मिराज 2000, जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयरक्रू ने साझा किए ऑपरेशन अनुभव, रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक, कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच आज चांदी से चमकी, सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत, बाढ़ में पिता को खोया अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार हॉकी में पाकिस्तान को हराकर भारत की नजरें गोल्ड

0: क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब में तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत के स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंत्र समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay, the headlines. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on the birth anniversary today. Special Gram Sabhas to be convened across the country on the occasion of Gandhi Jayanti. Civil Aviation Ministry initiates series of reforms to make aviation security processes simpler and quicker. Saudi Arabia hands over the UAE Omani co-pilot who made abortive attempt to crash fly Dubai's Tel Aviv-bound plane. Brave Indian pilot Smith Machar airlifted to Abu Dhabi for treatment. India closely following his health condition. Russian President Vladimir Putin says Prime Minister Narendra Modi has very good ideas to find mutually acceptable solution for Ukraine conflict. And India bags gold medal in the women's recurve archery team event at the Asian Games in Japan. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A series of functions have been organized across the country and by Indian missions abroad. A Sarva Dharma Prarthana Sabha was organized at the Samadhi Rajghat in the national capital.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक उपयोगी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रणाली को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सह पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट ने कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। कनाडा के अंतर

व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। कनाडा के

1967 में आई निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की राजेश खन्ना के साथ आशा पारेख अभिनीत फिल्म बहारों के सपने।

हिट फिल्मों की हिट नायिका जिन्हें हम आशा पारेख कहते हैं, फिल्मों ने स्टूडियो की शशधर मुखर्जी द्वारा निर्मित निर्देशित दिल देके देखो से फिल्म दर्शकों और समीक्षकों ने

1971 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कटी पतंग में आपने काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आशा पारेख की जिद्दी फिल्म भी काफी मशहूर रही और जिसमें ये गाना उनका काफी मशहूर रहा।

कई बार आशा पारीख को अपनी फिल्म में कास्ट किया जिसमें विजय आनंद और मोहन सहगल प्रमुख हैं। अपने हिंदी फिल्मी करियर की सफलता के दौर में आशा पारीख ने अपनी मातृभाषा गुजराती में भी फिल्में की, जिसमें 1963 की फिल्म अखंड सौभाग्यवती बड़ी हिट फिल्म थी। पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी आपने अभिनय किया। हिंदी की आन मिलो सजना इनकी कई लोकप्रिय फिल्मों में से एक रही।

बदन 1966 की, 1978 की चिराग, 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में आपके अभिनय को काफी सराहा गया। फिल्म भरोसा, आए दिन बहार के, उपकार, शिकार, कन्यादान, आया सावन झूम के जैसी 60 के दशक की फिल्में आशा पारेख के अभिनय से सजी।

मेरा देश 1971 की एक्शन ड्रामा फिल्म जिसे निर्देशित किया था राज खोसला ने, नायक धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म में जहां आशा पारेख अंजू बनी थी, वहीं विनोद खन्ना ने डाकू जब्बर सिंह का रोल अदा किया था।

बादाम, समाधि, राखी और हथकड़ी, हीरा, अनजान राहें, रानी और लाल परी, जख्मी, उधार का सिंदूर जैसी फिल्मों के साथ साथ 1970 के दशक में आई आशा पारेख अभिनीत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में एक कुलीन ठाकुर राजनाथ सिंह चौहान के प्रेम तुलसी का किरदार आपने निभाया था, जिसमें राजनाथ के बेटे अजय को जन्म देने के बाद तुलसी अपना जीवन राजनाथ की पत्नी के लिए बलिदान कर

सन 1980 के दशक में बिन फेरे हम तेरे, 100 दिन सास के, बुलंदी, कालिया, हथियार और बंटवारा जैसी फिल्में और फिर 1990 के दशक में प्रोफेसर के पड़ोसन, भाग्यवान और 1994 की घर की इज्जत और 1995 की आंदोलन। 1995 के बाद से ही आशा पारेख ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया, फिर कुछ काम टीवी के लिए किया। वर्तमान में आप अपनी डांस एकेडमी और सांता क्रूज में स्थित आशा पारेख हॉस्पिटल पर ध्यान दे रही हैं। जाहिर है अपनी उपलब्धियों की, सम्मानों की, फिल्मों की, अनुभवों की और यादों के साथ अपनी आप निजी जिंदगी जी रही हैं अपने ढंग से, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक फिल्मी दर्शकों की बात है, आशा पारेख जी के फैंस की बात है, तो आशा जी आज भी उनके लिए द हिट गर्ल है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था आशा पारेख पर, आलेखर स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक उपयोगी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित उनके समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रणाली को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अबीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में सह पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार सह पायलट ने कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें आबुधाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि कनाडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और एरोस्पेस क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के अवसर पर श्री सिद्धू ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं और पूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के प्रयास दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की तीरंदाजी रिकवर टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarv Dharm Prarthana Sabha was held at Bapu Samadhi Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarv Dharm Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. The nation also pays homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his 122nd birth anniversary today. He was born on 2nd October 1904 in Pandit Deen Dayal Upadhyay Nagar, previously known as Mughal Sarai in Uttar Pradesh. As a teenager, he joined India's freedom struggle and participated in the non-cooperation movement in 1921. Following independence, Shastri held several important positions in Uttar Pradesh and later in the Union government. Prime Minister Narendra Modi paid floral tribute to the former Prime Minister at his memorial Vijay Ghat in the national capital this morning. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 11 metro stations have been closed till further instructions in the national capital. These include Janpath, Patel Chowk, Central Secretariat, Rajiv Chowk, Seva Tirth, Mandi House, Lok Kalyan Marg, INA, Chavdi Bazaar, Ramakrishna Ashram Marg and New Delhi. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House, INA, New Delhi and Central Secretariat. Special Gram Sabhas are being convened across the country today on Gandhi Jayanti to deliberate on governance reforms, strengthening panchayats and improving public services in rural areas. The Rural Development Ministry said the meetings will also mark the launch of the People's Plan Campaign 2026-27, Sabki Yojana, Sabka Vikas. Saudi Arabia has handed over to UAE the co-pilot who made abortive attempt to crash Fly Dubai's Tel Aviv-bound plane. Investigators are probing the attack on Indian pilot Smith Machar by the co-pilot in the cockpit. The development came after Saudi authorities conducted a preliminary investigation into the incident that forced the flight to make an emergency landing in the Saudi city of Tabuk on Wednesday. Saudi Arabia's Interior Ministry said its initial investigation indicated that the co-pilot has assaulted the captain during the flight. The preliminary investigation was conducted in coordination with security teams from the UAE. Investigations into the incident, which occurred while the plane was flying over Saudi Arabia, are still in their early stages. Russian President Vladimir Putin has said that Indian Prime Minister Narendra Modi has very good ideas aimed at finding a mutually acceptable solution to the Ukraine conflict. Speaking at the Valdai Forum, Mr. Putin noted that Mr. Modi regularly raises the topic of ending the war during their discussions and shows strong interest in a peaceful settlement. Mr. Putin described India's diplomatic position as neutral, yet deeply invested in bringing the hostilities to an end, while Mr. Modi was previously emphasized that India stands firmly on the side of peace. Mr. Putin expressed gratitude for Mr. Modi's persistent engagement and practical approach towards dialogue and diplomacy. India won silver medal in the recurve mixed arm archery event at the Asian Games in Aichi Nagoya, Japan today. The Indian duo of Kumkum Mohor and Dheeraj Bomadevra clinched the silver after losing 3-5 to China in a highly competitive final. This marks a historic achievement as it is India's first ever medal in the recurve mixed team event since its debut at the Asian Games in 2018. 17-year-old Kumkum Mohor was the star of the morning, uniquely winning both a gold in the women's team and a silver in the

0: है फरमाइश
1: सर। नमस्कार
0: नमस्कार
1: सर, मैं
0: बोलिए।
1: गांव लिहे दिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश सोहन बात कर रहा हूँ।
0: जी जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, आप सभी से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, फोन कॉल नहीं लग रहा था, बहुत परेशान हो रहा था सर। अब जैसा शुरुआत हुआ था उसके बाद फोन ही नहीं लगा था मेरा।
0: बताइए, इतने दिनों बाद फोन लगाए, तो बताइए आपके इलाके की क्या हालचाल है भाई?
1: सर इलाके की हालचाल तो बहुत गर्मी है और बहुत धूप है, मतलब बारिश नहीं हो रही है। अब तो खेत में फसल को पानी भर रहा है, कपास को
0: जी कुछ जगहों पर बहुत
1: तो।
0: बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं हो रही, क्या माजरा है ये?
1: हाँ सर, मैं भी सुन रहा हूँ कि मतलब जगह जगह ये रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ना, तो कुछ जगह बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में बारिश क्यों नहीं हो रही सर?
0: हाँ हाँ देखिए ना, मौसम किस तरह से बदल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना?
1: सही बात है सर, परेशान हो रहे हम लोग के यहाँ पे खेत में, सब मोटर से पानी चला रहे हैं और ऊपर से बारिश नहीं हो रही है।
0: जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सर विविध भारती के कार्यक्रम मुझे सबसे ज्यादा हेलो फरमाइश और सखी सहेली, हेलो सहेली और जो पत्र आधारित के कार्यक्रम शुरू हुआ ना,
0: जी
1: तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा
0: सखी,
1: हमारा वह फेवरेट प्रोग्राम है हेलो फरमाइश,
0: अच्छा सखी सहेली तो महिलाओं का कार्यक्रम है।
1: तो भी अच्छा लगता है सर सुनने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो गाने की फरमाइश।
1: गाने की फरमाइश सर, फिल्म का नाम है सरगम और गाने का बोल है पर्वत के उस पार।
0: चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर, यूनुस खान जी।
0: नमस्ते भैया,
1: मेरा नाम रामेश्वर अकबर है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: अरे क्या बात है, छतरपुर से बोल रहे, क्या हाल चाल भैया?
1: बढ़िया है सर, अभी एक्सीडेंट हो गया था, 2 दिन वहाँ पड़े रहे बिस्तर में
0: कहाँ होगा एक्सीडेंट, कैसे होगा वो?
1: सर। बस टकरा गई थी उससे, बस और उसका हुआ ट्रक का।
0: तो आप काय में थे, बस में कि ट्रक में?
1: बस में थी सर, डिपो में, यहाँ पे हमीरपुर में।
0: ए दद्दा रेसो, सब ठीक ठाक है,
1: हाँ
0: सलामती
1: सर,
0: है?
1: सर सर फट गया था सर, अभी 2 दिन महीने से हाथ फ्रैक्चर है, अभी बिस्तर में पड़े हैं सर
0: ए दद्दा रे, तो बहुत ही बुरा हुआ।
1: जी
0: आजकल लोग
1: सर।
0: गाड़ियां वाड़ियां ठीक से नहीं चला रहे मालक,
1: हाँ हाँ सर, ऐसा भी है।
0: है ना? हम सब लोगों से जे कहेंगे कि सड़क पे निकले तो थोड़ी अच्छे से गाड़ी चलाएं, और का
1: जी सर, आपसे दूसरी बार बात हो रही है मेरी
0: दूसरी बार, हमें तो याद नहीं है।
1: सर। अभी हुई थी ना, जब आप पूछ रहे थे हम यहाँ लग गई हम, मैं कि नहीं लगी।
0: अरे हो, अमिया अमिया, गर्मी के मौसम में बात हुई।
1: हाँ जी सर, हुई थी।
0: अच्छा जी, बताइए कि छतरपुर की क्या हालचाल, ज्यादा बारिश हो गई?
1: हाँ हाँ सर,
0: अच्छा,
1: सर वो खेत हमारे तालाब में है ना, इसलिए डूब जाते हैं, ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, मतलब ठीक ठाक हो गई
0: तो का उगाते हैं अपन इन दिनों में खेत में, का चल रहा?
1: सर। सोयाबीन, उड़दा और मूंग
0: अच्छा, उड़दा भी उग जाती है?
1: जी सर।
0: अच्छा, जो हमारे श्रोता बुंदेली नहीं जाना तो उनको बता दे, उड़दा माने उड़द की दाल।
1: जी सर, उड़द
0: हाँ, नहीं तो उड़दा लोग समझ ही नहीं पाए हैं।
1: जी सर। आप तो बुंदेलखंडी जानते हैं अच्छे से सर,
0: नहीं थोड़ी थोड़ी जाना थे भैया, हम सोई बुंदेलखंडी आए।
1: आप बताते रहते हैं ना, भोपाल में सागर में रहे हैं तो आप तो जानते ही होंगे
0: हाँ थोड़ी थोड़ी, हाँ अपन बुंदेलखंडी आए थोड़े थोड़े।
1: जी सर।
0: सो आज कौन से गाने की फरमाइश आ रही ये बताओ।
1: सर हम वो वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
0: चलिए पूरी कर रहे आपकी फरमाइश, छतरपुर में आपके लाने सुनवा रहे जे गाना।
2: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले।

हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले।

वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे जाने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ताली चक धूम तक ताली चक धूम तक बना हम तक धूम तक ताली के नक तक नक तक धूम तक नक नक धूम तक नक नक धूम तक नक नक जम धरिता जग धरिता जन जाने को गुदारी दागु तारी के ताली धूम धरिता जग धरिता जन जाने को गुदारी दागु तारी के जम तारी जग तारी तक नक नक तक धूम तक धूम तक धूम तक जम तारी जग तारी जाने जाने को तक धूम तक धूम तक धूम तक तक धंगी धंगी धंगी तारी जग धंगी धंगी तक धंगी धंगी धंगी नारंगी की पाता पाता चिंता रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंग।

बह कंदान, सूरत से अजी बह कंदान, पर

0: हेलो फरमाई। क्या
1: नमस्कार सर, ग्राम दुखिया जिला विदिशा से कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ सर। बस
0: जी कैसे हैं?
1: सर एकदम मस्त है सर। यूनिस जी आपकी आवाज तो हमारे दिलों में बसी है, बिल्कुल आपकी आवाज सुनते हैं तो मैं समझ जाते हैं यूनिस जी आ गए
0: अरे
1: हमारे।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुराने श्रोता हैं आप विविध भारती के।
1: बिल्कुल सर आपने सही पहचाना, कम से कम 30 साल हो चुके हैं विविध भारती से जुड़े जुड़े
0: इन 30 सालों
1: और
0: में विविध भारती कितनी बदली है कैलाश जी।
1: प्रोग्राम तो सर एक सुबह का एक लाजवाब है सर विविध भारती के, और लगातार विविध भारती हम सुनते हैं एकदम देश की सुरी, जो विविध भारती कहते हैं वो बिल्कुल सच है बात।
0: और देखिए 3 अक्टूबर को विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश करेगी। इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं
1: जी
0: आप?
1: बस सर इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बस सर
0: जी
1: बस सभी लोग यही विविध भारती सुनते रहे, मनोरंजन तो है ही और साथ में ज्ञान भी मिलता है सर इससे, विविध भारती से बहुत अच्छा लगता है साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं कैलाशी?
1: जी सर आज सुनना चाहेंगे फिल्म मन का है नशा, ये प्यार का नशा है, क्योंकि विविध भारती का नशा जो है ना बहुत है हमको, और वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं और अच्छा लगता है ये।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके
0: सुनिए ये गाना।

0: रहो न होश में दीवानो।
1: अब फरमाइश।
2: और मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेर टांड से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
1: वसीम भाई कैसे हैं?
2: अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ईश्वर की कृपा है और आपकी दुआएं सर।
1: आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर है ना, इससे बहुत सारी चीजें याद आ गई।
2: जी सर,
1: फिल्मों में पहले दिखाते थे रामपुरी।
2: जी, रामपुरी चाकू के नाम से आना जाता सर। हाँ। और ये इंडस्ट्रियल एरिया है रामपुर।
1: अच्छा।
2: मतलब सर यहाँ पे धानों की खेती, गन्ना, गेहूँ होता सर।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही पुराना इलाका है, वहाँ की तहजीब बहुत अलग है।
2: जी सर, सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एमए कर रखा पॉलिटिकल साइंस से।
1: अच्छा।
2: और जब जब समय मिलता है सर आपको प्रोग्राम सुनते हैं। विविध भारती से सर बहुत पुराना नाता है और एक लंबे अंतराल के बाद आपसे हेलो फरमाइश में बात हो रही है, तो अपनी खुशी सर मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता कि इतनी खुशी हो रही है सर मुझे।
1: आपकी आवाज में आपकी खुशी छलक रही है।
2: जी सर, और आपकी आवाज सुन लेते हैं तो सर आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम अच्छे से पेश करते हैं सर, बहुत खुशी होती है सर आपकी आवाज सुन के सर, बस कुछ बयां नहीं कर सकते कि इतनी खुशी महसूस हो रही है सर आज।
1: शुक्रिया भाई, बताएं किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
2: सर मूवी का नाम है अंदाज और उसमें एक सॉन्ग है किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, इसके वो है।
1: जी बिल्कुल।
2: और जी सर आपके लिए वो लाइन है
1: इरशाद,
2: काश के मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश के मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं सर आपकी जिंदगी की। नहीं
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब आपको सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का ये गाना रामपुर में।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, दिनों से बात करना चाह रहा हूँ तो आपसे आज बात हो रही है सर।
0: जी, नाम क्या है आपका?
1: मैं इस्माइल पात्रू शरीफ तालुका मझलेवा जिला बीड से बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ सर, आपकी दुआ से, अल्लाह के फजल से।
0: और बताएं, विविध भारती के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लग रहे सर, सब गाने सुनता हूँ सर मैं आपके कार्यक्रम के।
0: जी जी बहुत
1: हाँ
0: बहुत
1: सर,
0: शुक्रिया।
1: और शेर कहना चाहता हूँ सर मैं।
0: इरशाद।
1: फूलों में हंसी गुलाब है, फूलों में हंसी गुलाब है, पढ़ाई की नो जरूरी किताब है। अगर हमसे कोई पूछे विविध भारती के बारे में तो हम कहेंगे वो बहुत बहुत बड़ा जवाब है।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कातिलों में कातिल सर,
0: अरे बाप रे, कातिलों का कातिल, कौन सा गाना?
1: ये अल्लाह को खबर, ये मौला को खबर, बहुत अच्छा गाना है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: फरमाइश।
1: उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खेतानी से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ सर।
0: जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: सर एकदम अच्छे हैं, आप बताइए सर आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। विविध भारती का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए कौन सा है आपकी नजर में?
1: सर मेरी नजर में सबसे अच्छा प्रोग्राम तो देखिए सर फोन इन प्रोग्राम में ही।
0: अच्छा,
1: इसके अलावा जो आप मैसेज के आधार पर जो सॉन्ग चलवाते हैं वो, और रात में जो भोले विष्णु गीत और ये पिटारा के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं सर,
0: हाँ जी,
1: ये सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सर।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और जिस तरह की बात आपने कही, विविध भारती 3 अक्टूबर को अपनी सालगिरह मना रहा है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: सर देखिए विविध भारती हमारे दिलों को राज करता चला आ रहा है इस जमाने से,
0: जी,
1: और सर यही ऐसे जो प्रोग्राम चल रहे हैं और ऐसे चलते रहे और हम इससे जुड़े रहे,

0: ज्यादा बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं।
1: आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
0: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी और गाने के लिए कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
1: वाह भाई वाह,
0: के गाने का बोले सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही गाने की बोल बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी हो रही है आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

0: साधु फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग होती है सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 0222867 0288, दूसरा नंबर है 0224002466 यानी 4002462। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से। और अब ये इल्तिजा कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनसे ये निवेदन है कि अगले 2 महीने तक हमें फोन न करें ताकि।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

0: और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया और राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा है कि गांधी जी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक उपयोगी हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि आज दुनिया में हिंसा बढ़ रही है और ऐसे समय में महात्मा गांधी का अहिंसा और भाईचारे का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाने के वास्ते कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबुधाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदा सिद्धू ने कहा है कि कनाडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और एयरोस्पेस क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के अवसर पर श्री सिद्धू ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के प्रयास दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 70 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो की इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाई ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला विकल्प तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व मिक्स्ड टीम तीरंदाजी में भारत ने रजत पदक जीता। कुमकुम महूद और धीरे बोमा देवरा की जोड़ी ने चीन से 3-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। भारत की नेत्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 70 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यान आकाशवाणी तुरा नासिमांग दिल्ली हिंदी खबर को खनासुहा समय दिग्नि बाजि मिनट बंगा और या समय दा सानी दुंग प्रोग्राम और अबथामना थाई सोगमन प्रोग्राम को समय बक्सा सुलसुंग चिग्नि बाजि मिनट खुंगो बोर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को गमतानी समय बोर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ने असिस्टेंट डिरेक्टर मा इवा गुनमे अरमारक ने आगना निरंग को खनासुगेन चिग्नि बाजि मिनट खोलाचियो विवेद भारती SMS की बहाने BVS की तारने चिग्नि बाजि मिनट सोपोंगा बुंगा ओ विवेद भारती जारोका साबाजियो विवेद भारती हिट सुपर हिट साबाजि मिनट खोलाचियो विवेद भारती मान चाहे गीत गनी बाजियो सालनी इंग्लिश खबर गनी बाजि मिनट बुंगा ओ सालनी हिंदी खबर गनी बाजि मिनट खोलाचियो विवेद भारती हिंदी को बो गथाम्बाजी मिनिट बोंगाउनी गथाम्बाजी मिनिट कोना इंग्लिश को बो को खनासुगेन यावान दा साजा चीनी दों क्वेंग पा प्रोग्राम रांगा दा जोल जोल अथामोना थारे सोगमन प्रोग्राम को सुसु व्याख्यान लोक पाजियो

0: शंकर जयकिशन की तर्ज पर ये गीत आप सुन रहे थे असल जयपुरी की बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म कन्यादान।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं।

0: साढ़े 12 बजे से 2 बजे के बीच। अपनी मिल की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

दो बदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रवि की तर्ज शकील बदायूनी के बोल, आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आनंद बख्शी के बोल के साथ, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें आया सावन झूम के, इस फिल्म से गीत सुनते हैं।

दिल भी तेरा हम भी तेरे इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। हमने आवाज ही किसकी पहचानने के लिए कहा था और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हमारी गलती ना हो उस समय यदि कोई गलत ठहराने लगे तो बड़ा दुख होता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्म से लेकर नदी होने तक किसी न किसी को बिछड़ने का डर, जब दर्द हद से गुजर जाए तो परिस्थितियों या इंसान को तोड़ देती है और सारे दुख दर्द को गले लगाकर खुद को मजबूत बनाकर इंसान जीने लगता है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, हम बताते हैं कि उन्होंने क्या बताया है हमें गम और दर्द के बारे में और किस तरह से वो उससे निजात पाते हैं। हमारे एक साथी कहने गम आने वाली खुशियों की आहट देता है, दर्द जख्म के ठीक होने की राह देता है, तन्हाइयों का तो क्या जनाब वो खुद को खुद से मिला देता है। गम दर्द और तन्हाई आने वाली खुशियों का गुलदस्ता हो सकता है, आने वाले पल पर भरोसा रखिए कुछ भी स्थायी नहीं होता। क्या ये खूबसूरत बात हमारे साथियों ने लिखी। हमारे एक और साथी लिख रहे हैं कि इन दिनों मेरा इन्हीं से पाला पड़ा है, दर्द गम और तन्हाई के कह रहे हैं। तो हमारे आज का ये कार्यक्रम सांत्वना का एक रूप होगा, अब इंतजार है दिन के 1 बजने की। तो भाई हम इन्हें बिल्कुल सांत्वना तो देते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि जैसा कि हमारे साथी ने लिखा कि कोई भी वक्त ठहरता नहीं, बीत ही जाता है। वही हमारे एक और साथी कहने के संसार के रचयिता ने हर इंसान के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उसके जीवन में सुख और दुख आते ही है, चाहे राजा हो या रंक, अमीर

लेकिन दुख आने पर लोग निराश हो जाते हैं। मेरा मानना है कि दुख इंसान को सबसे अच्छा साथी होता है। दुख हमें बहुत कुछ सिखाता है और अपने पराए की पहचान भी करवाता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, वक्त की दीवार पर ऐसा कुछ

लाइव के जरिए, क्योंकि कल फेसबुक लाइव के जरिए हमारे सभी श्रोताओं को हम शामिल करेंगे इस जश्न में, और साथ ही आप पूछ सकते हैं अपने सवाल लाइव भी, जिन्हें शामिल किया जाएगा कार्यक्रम में, जैसा कि हम रोजाना सुबह सफर कार्यक्रम में ही करते हैं। लेकिन कल मौका खास है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4

लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं। इस बात का अफसोस होता है और दुख होता है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख और बादल एक जैसे होते हैं, जब तक बरसते नहीं तब तक हल्के नहीं होते। जीवन के दायरे में अनेक बार ऐसी स्थिति का समय ऐसे ही माहौल में ये गीत मस्तिष्क में आ जाए, फिर कहने ही क्या कि राही मनवा।

0: मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत को फिल्म गीत के लिए फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहाँ हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में।

आगे भी कोई रास्ता होता है। आंख छलके तो इस बहाने इसे बहने दो, मत रोको। बोझ सीने को का रोने से ही कम होता है। वक्त बरहम है हर एक जख्म का, ये याद रखो। शब जितनी भी हो काली, सवेरा होता है। अपने खुद को संभालो, जरा ठहरो, देखो हर अंधेरे के पीछे एक चिराग होता है। भाई क्या बेहतरीन बात आपने लिखी।

के बाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से।

0: राष्ट्रों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने

0: लगना है चीन की बाउ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों के सेपक टकराव के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 33 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन सुत मच्छर से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाई ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे कुमार जलाल आबादी के बोल हावा ब्रिज फिल्म के स्टेज को संगीत से सजाया ओपी नैयर ने। अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंग। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ।

0: torna mai lì. www.pisali di Fas, Jashnish, Kumaris, Tariki, Abdekira, Team October, Dini, Gara, Bodhisi, Bara, Bodhotel, Vivi, Bharati, Kisal, Girupar, Kuma, Arun, Hungi, Lai, Kumarisa.
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: शहर में आप रहती हैं रूही जी?
1: जी मैं मोहाली में रहती हूँ
0: माहौली के बारे में कुछ बताइए, कैसा शहर है
1: जी। बहुत अच्छा शहर है पंजाब का, है
0: जी?
1: ना, चंडीगढ़ के पास लगता है।
0: और चंडीगढ़ के आसपास जो भी शहर हैं वहां पंजाब में तो वैसे भी ठंड बहुत पड़ती है, और अब मौसम में जब बदलाव आने की शुरुआत हो रही है तो बताएं
1: जी
0: क्या ठंड
1: हाँ
0: पड़ने की शुरुआत हो रही है अभी?
1: हाँ जी जी मौसम एक दो दिनों में ही बदला है, बहुत अच्छा हो गया है, ना
0: जी
1: गर्मी ना सर्दी।
0: तो अभी जो गुलाबी सी ठंडक आने लगी है ये बड़ा
1: जी
0: खुशगवार मौसम हो रहा है वहां का।
1: जी मैम हाँ जी
0: और आप क्या करती हैं रूही जी?
1: जी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और अभी फ्री पीरियड है,
0: अच्छा, तो फ्री पीरियड है इसलिए आपको मौका मिल गया कि आपने
1: और
0: हमसे
1: मौका मिल गया।

0: सुन सुन के बड़े हुए हैं।
1: जी। और स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं तो एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलती है वो होता है धैर्य।
0: जी
1: छोटे बच्चों को पढ़ाते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है।
0: जी बिल्कुल
1: तो रूही जी बताइए, आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
0: जी, आप तो लता जी का सुना दीजिए, मिला है किसी का झुमका, परख फिल्म से।
1: परख फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, मिला है किसी का।

0: जी तो दीदी हमारी एक साल जो तबियत डाउन हुई थी तो फिर दीदी हमारे पापा मम्मी ने फिर भेजा ही नहीं दीदी स्कूल।
1: तो इसके अलावा अगर आप चाहती हैं तो घर पर रहकर भी पत्राचार माध्यम से आप अपनी परीक्षाएं दे सकती हैं और अपनी शिक्षा पूरी कर सकती हैं। अभी तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसमें स्कूल और कॉलेज जाए बिना आप शिक्षा अपनी पूरी कर सकती हैं।
0: जी दीदी करेंगी दीदी अगर बनेगा प्रयास तो करेंगी दीदी हम।
1: जी, और आपके क्या क्या शौक हैं सुलोचना?
0: दीदी दीदी हमें रेडियो सुनने का बहुत शौक है दीदी। बचपन में हमारे मम्मी पापा सुनते थे जब आपके घर यहाँ से वो कार्यक्रम आता था दीदी एक वो सुनते थे बहुत SMS की बहाने भी प्लेट के तराने 12 बजे आता था वो तो
1: हाँ
0: दीदी वो सुनते थे। और दीदी सती सहेली तो हमारी हमारे गांव पे हमारी मम्मी और बहुत सी सतिया मतलब साथ में बैठ के सुनती है दीदी।
1: अच्छा, तो सुलोचना जी, आपको गानों के कार्यक्रम ज्यादा पसंद आते हैं या किसी और तरह के एक प्रोग्राम सुनती हैं?
0: दीदी हमें तो सखियों की बातें अच्छी लगती है गाना तो लगते हैं दीदी जैसे हेलो सहेली है और सखी सहेली में जो आप लोग दो दीदी आती हैं वो अच्छी अच्छी बातें बताती है पकवान के बारे में कैसे बना कुछ भी मतलब ये जानकारी देती हूँ आप लोग।
1: आप सिर्फ सुनती हैं या कुछ बनाते भी हैं उन पकवानों में से?
0: दीदी बनाते भी है दीदी हम बना लेते हैं
1: जी, अच्छा, अब बताइए कि आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
0: दीदी। मूवी का नाम है वीरजारा।

0: हमें भी उतनी ही खुशी होती है। अपने बारे में कुछ बताइए पूनम।
1: जी मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और चंचल मैम, मैंने आपको सुना है, बड़े
0: जी
1: कार्टूनिक और बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति रहती है। और मैम, मैं ऑनलाइन जॉब करते हैं और मेरा जॉब भी रहता है, और आप रेडियो से मैं जुड़ी रहती हूँ। गीत संगीत से बहुत ज्यादा मेरा जुड़ाव है।
0: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं पूनम जी?
1: मैम आज की सुनाइएगा, तेरे चाहत के सिवा।

0: के बाजारों में भी उसकी मांग बहुत ज्यादा रहती है। आपकी बातें भी उतनी ही खूबसूरत हैं। और बताइए कि आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमें सुना है मेरी जंग, इस मूवी का वो सॉन्ग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
0: तो बहुत खूबसूरत गीत आपने पसंद किया।

0: हेलो सहेली,
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्ते। बताइए, हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर कौन सी सखी जुड़ी हैं?
1: जी मैम, रिंकू देवी बात कर रही हूँ। मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील ठाठी गांव कंठी से।

0: किए, जब मैंने सोचा फोन लग जाएगा तो मैं आपको सुनाऊंगी। एक कविता है हम हिंदुस्तानी, उसका नाम रखा है मैंने,
1: जी
0: और वो कविता इस तरह से है, शहर को गांव बना दो। क्योंकि आजकल शहर बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी कुदरत को लेकर

आज अचानक ठंड बढ़ गई है। गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करती हुई लॉन में आ गई है। लॉन के किनारे किनारे की घास

माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब।

पाती है जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा, पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स

से दूर आई हूं उन्हें नाराज करके, तो कुछ बनकर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है। हां, पर तुझे प्रॉब्लम क्या है?

मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तो बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी, सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं

झूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय

किया करते थे। नसीब में जब हीरा लिखा हो तो सोने के खोने का गम मत करना, और जब हीरा मिल जाए तो सोने से तुलना करके

किया करते थे। नसीब में जब हीरा लिखा हो तो सोने के खोने का गम मत करना, और जब हीरा मिल जाए तो सोने से तुलना करके

हर शाम तुमसे मिलने की चाहत में दर पर अखियां बिछाती हूँ, तुम्हें आता देख खुशी से बावरी हो जाती हूँ, और जब तुम जाते हो तो बिछड़ने के ख्यालों से बेचैन हूँ।

0: baby party program chikung ba ji hindi ko bra chikung bo ba ji english ko bra pon khami chikung chikung ba ji ni chikung khola chi ba ji na baby party program ko khana man gen yaran ta mar den so man den thang den program na wa karat ke man gata tik tik sani jama no to bo ba ji shilong station no ni ko ta chka ba aaj ko bo ko khana man gen yan akashwani tura
1: पापा के जुआ पूंजी उनकी सीख
2: और हमेशा हमारी फिक्र करना, वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है
1: और क्लेम करना मुश्किल होगा।
2: हाँ, वो भी आसान हो गया है बैंक की वेबसाइट या ब्रांच।

Thank you.

Thank you.

Appreciate it.

0: 작년 아시죠? 나라마다 그 신을 갖고 있냐? 앞서는 경험을 못하고 가인이 보였고
1: Gracias.

Thank you.

No, no, no, no, no, that doesn't work.

남자 많이 나눴다면 이 사람이 스크롱아 나게 오늘의 남자 이와 비슷한 게 아무래도 말씀을 하네요 그 세일자 뭐라고

0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।
1: Food safety 내가 실용 니가 따위 위해 때가.

0: फौजी साथियों, कार्यक्रम जयमाला में आपका फिर से स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
1: अरे

0: संगीत सुरों में भक्त की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव में मिठास है।
1: घने श्याम शिव नाम सुनो
0: वो है संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, ये मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, ये जो भाषा है ये सतुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: फौजी साथियों, कार्यक्रम का अगला गाना उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में है। फिल्म का नाम है मिशन कश्मीर, गीत राहत इंदौरी का है, संगीत शंकर एहसान नायक का।

आप सुनते हैं आशिकी फिल्म का गाना अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में, गीत समीर का है, संगीत नदीम शेवन का।

0: नमस्कार श्रोताओ, अनमोल यादें कार्यक्रम के इस आखिरी एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्ते, सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार फिर से। और फिर से आज मैं आपको 60s में लेके जा रहा हूँ, जो मेरे पर्सनल राय में
0: अच्छा
1: हिंदी फिल्म संगीत का सबसे सुनहरा
0: दौर था
1: है।
0: वो।

0: जी, इसकी शुरुआत हम करते हैं एक ऐसे फिल्म गीत से जिसे एक बड़ा ही अलग तरह का अवार्ड मिला।
1: अच्छा
0: सुर सिंगार संसद एक ऐसी संस्था थी
1: जी,
0: जो हर साल सिने जगत के सबसे अच्छे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग को अवार्ड देती थी,
1: अच्छा
0: और 1968 का अवार्ड इस गाने को मिला जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं।
1: आप वापस फिल्म की बात कर रहे
0: जी
1: हैं।
0: हाँ,
1: अच्छा
0: रफी साहब ने गाया हुआ कमाल का ये गाना, मजरू साहब का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसके कंपोजर थे, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इसके बाद में नाचे मयूरी 1986 और राम लखन 1989 में फिर से यह अवार्ड मिला था
1: अच्छा
0: पग पादम और बड़ा दुख दीना के लिए।
1: जी
0: तो ये गाना उनका पहला अवार्ड था। हालांकि इस फिल्म के दो और गाने,
1: जी
0: एक तेरा साथ और आई बहारों की शाम, उस जमाने में बड़े लोकप्रिय हुए थे, आज भी।
1: लोकप्रियता के दौर में ये गाना कहीं पीछे रह गया था। चलिए सुनते हैं वापस फिल्म का ये नायाब गीत।

0: उस जमाने में बेस्ट क्लासिकल बेस्ड गाने का गीत का अवार्ड जीतने वाला ये वापस फिल्म का गाना आपने हमें सुनाया। और राजीव जी अब किस गीत की बारी है?
1: अब देखिए मैं 70s के एंट्री में लेकर जा रहा हूँ आपको।
0: हाँ हाँ,
1: और हेरे कन्हैया ये गाना बड़ा ही पॉपुलर हुआ था फिल्म थी छोटी बहू।
0: हाँ,
1: छोटी बहू में एक ऐसा गाना था जो कैफी आजमी साहब और कल्याण जी आनंद जी का सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ गाना था। उसके बाद में उन्होंने दो और गाने के, एक नसीहत में था, एक आखिरी मुजरा करके फिल्म थी
0: जी जी,
1: लेकिन ये गाना रफी साहब ने गाया हुआ बड़ा ही रोमांटिक गाना है। और कल्याण जी आनंद जी ने भी बहुत ही कम ऐसे गाने बनाए रफी साहब के साथ जो इतने रोमांटिक है।
0: अच्छा,
1: कैफी साहब तो खैर रोमांस के बादशाह, तो अगर आप उनकी पूरी ट्रैक रिकॉर्ड, आप उनका पूरा
0: हाँ
1: करियर देखें, तो
0: उन्होंने
1: कमाल गाने लिखे हैं रोमांस के डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो खुद एक बड़े ही रोमांटिक इंसान थे।
0: जी जी
1: इंसान ही रोमांटिक थे तो शायरी तो रोमांटिक होगी
0: नहीं।
1: तो ये गाना सुनते हैं, ये रात है प्यासी प्यासी
0: छोटी।

0: सूटी बहू फिल्म से ये एक रोमांटिक सॉन्ग हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। और राजीव जी, आज के इस आखिरी एपिसोड का और हमारी सीरीज का अनमोल यादें इस श्रृंखला का आखिरी गाना कौन सा होगा?
1: मैं कुछ फिल्मों के नाम लेना चाहूंगा।
0: अच्छा,
1: प्रिंस,
0: हाँ
1: सूरज,
0: हाँ
1: दुनिया, प्यार ही प्यार, संगम, आम्रपली, न्यू दिल्ली, जिंदगी। ये सारी फिल्मों में जो कॉमन पॉइंट थे
0: जी
1: वो शंकर जयकिशन का म्यूजिक
0: हाँ
1: और वैजयंती माला की अदाकारी। एच डी बर्मन के अलावा शंकर जयकिशन के साथ वैजयंती माला ने सबसे ज्यादा काम किया और सबसे कमाल काम किया,
0: जी
1: लेकिन उनके गाने भी बहुत चले। संगम, आम्रपली, अगर आप
0: बिल्कुल
1: देखो,
0: बिल्कुल
1: सूरज, काफी गाने उनके हिट हुए। उनमें से काफी गाने लता जी ने भी गाए थे, लेकिन लता जी का गाया हुआ ये गाना जो फिल्म में रेडियो पर सुनाई देता, मतलब वो रेडियो स्टेशन पे माइक पे गा रहे हैं, जिस तरह
0: अच्छा
1: हम आज माइक पे बोल रहे हैं, ये गाना मुझे बहुत बहुत बहुत पसंद है। छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना, जिसमें उत्तम कुमार हीरो भी थे और प्रोड्यूसर भी थे, उनकी एंट्री हुई हिंदी फिल्मों में, उन्होंने थोड़ी बहुत हिंदी फिल्में भी की,
0: जी
1: लेकिन ये गाना जीवन के दो राहों पे खड़े सोचते हैं हम, इस तरह हम भी ये सोच रहे हैं कि ये अनमोल यादें का कार्यक्रम
0: जी
1: अभी समाप्त होने जा रहा है, और रेडियो पे बात करते करते हम रेडियो पर ही गाया हुआ गाना वैजयंती माला का संगीत
0: आइए सुनते हैं छोटी सी मुलाकात फिल्म से ये गीत।

0: क्या बात है राजीव जी, देखते ही देखते 13 एपिसोड्स पूरे हो गए हमारे अनमोल यादें कार्यक्रम के, और बहुत ही नायाब और बहुत ही रेयर सॉन्ग्स इन 13 एपिसोड्स में आपने हमें सुनवाए, उन गीतों को याद किया, उन गीतों के बारे में अपने कुछ निराली सी बातें भी अपने श्रोताओं को सुनवाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू जैन जी, बड़ा ही मजा आया इस श्रृंखला को पेश करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए। आपके साथ हमारा समय बहुत ही अच्छा गुजरा और मैं आशा करता हूँ कि कभी न कभी मुझे मौका मिलेगा ऐसे गाने फिर से लोगों के सामने पेश करने का।
0: जरूर, और श्रोताओं आप अपनी राय इस कार्यक्रम के बारे में, इस पूरी श्रृंखला के बारे में हमारे फेसबुक पेज पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक
0: नमस्कार।
1: यू, नमस्कार, शुभ
0: अनमोल यादें,
1: रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण भंग, संपादन सहयोग रीना जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
0: अनमोल यादें।

0: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुजीत कलकल ने अपनी इस जीत को देश के नाम समर्पित किया।
2: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ कि दोनों से ये मेडल आया। सोच के उतरे थे मेडल पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
1: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नीम चिन चिन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर से बात की। कैप्टन स्मित मच्छर ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। प्रधानमंत्री ने श्री स्मित के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं है जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
3: आपकी हिम्मत में, आपके धैर्य में और आपकी सुरमुल में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने, इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर को इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की।
1: प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छर का इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। दुनिया भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी है। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतृक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर है हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई। कुश्ती में सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक पर लगाया दांव, यादगार वापसी कर जीता फाइनल मुकाबला। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर जीता स्वर्ण पदक, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई किया। महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने दक्षिण कोरिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, स्वर्ण पदक देश के नाम किया। उधर पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। और सेलिंग में नेत्रा कुमानन और सेपक टैकरो में भारतीय पुरुष स्क्वाड्रन टीम ने जीता कांस्य पदक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने आज एक के बाद एक कई पदक जीते। भारत ने आज टोटल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। चाहे हम मुक्केबाजी की बात कर ले, कुश्ती की बात कर ले, या फिर महिला हॉकी टीम की बात हो, या फिर आर्चरी की बात हो, सब में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश का झंडा शान से लहराया है। शुरुआत करते हैं मुक्केबाजी से। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम, परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में देश के लिए स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अलग अलग वर्ग में देश को पदक दिलाए। अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम फाइनल में दक्षिण कोरिया के किम मिन सियोंग को 4-0 से हराकर देश के लिए स्वर्ण पदक से अपना अभियान समाप्त किया।

0: कुश ने जोरदार पंच लगाते हुए पहला राउंड 4-1 से जीता। दूसरे राउंड में भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा और उन्होंने 1-2 कॉम्बिनेशन और काउंटर पंच के साथ 5-0 से जीत हासिल की। अंकुश ने इस जीत के बाद कहा कि उन्हें अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था।
1: समझ रहा बोल जीत के और दिमाग में तो यही था कि हाँ बाउट जीतनी है, कैसे कैसे प्रेशर तो नहीं था पर लेकिन ये था कि खुद की जो मेहनत की थी उस पर विश्वास था कि हाँ गोल्ड लेना है। मोटिवेशन तो है कि वहाँ पे भी गोल्ड आया था और यहाँ पे भी गोल्ड है, कोर्ट बनाए रखे और हम और भी आगे जाएंगे।
0: उधर लवलीना बोरगोहाइन और परवीन हुड्डा ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए महिला मुक्केबाजी के स्वर्ण के लिए देश का 12 साल का इंतजार समाप्त कर दिया। दोनों ने मजबूत दावेदार मानी जा रही अपनी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अलग अलग अंदाज में शानदार जीत दर्ज की। भारत की सबसे सफल मुक्केबाजों में शामिल ओलंपिक पदक विजेता लवलीना ने अपने 29वें जन्मदिन को खास बनाते हुए चीन की बाओ जीयी को 5-0 से हराया। उन्होंने इसके साथ ही पिछले एशियाई खेलों में जीते रजत पदक का

0: जीत के बाद लवलीना ने कहा कि ये पदक मेरे लिए बहुत खास है।
1: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए। कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मैं स्ट्रॉन्ग होके आना और जीतना हो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए। मेरा बहुत ज्यादा वेट कंट्रोल नहीं रहता है, लास्ट के 2-3 दिन ही 1-2 केजी कम करना पड़ता है, लेकिन आज तो जरूर गोल्ड मेडल की वजह से जरूर स्वीट खाऊंगी।
0: प्रवीण ने इसके बाद पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता चीनी ताइपी की नियन चिन चिन को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ लवलीना और प्रवीण एशियाई खेलों में मुक्केबाजी का स्वर्ण जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाजों की विशिष्ट श्रेणी में शामिल हो गई हैं। उनसे पहले मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम ने 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में 51 किलोग्राम फ्लाईवेट वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था। आईची नागोया में भारत ने मुक्केबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 पदक जीते जिसमें 3 स्वर्ण शामिल है। प्रिया घंगास ने 60 किलोग्राम, कपिल पोखरिया ने 90 किलोग्राम और नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक वर्ग में कांस्य पदक जीते। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजी प्रदर्शन 2010 के ग्वांगझू खेलों में रहा था, जहां भारतीय टीम ने कुल 9 पदक हासिल किए थे। इनमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे। महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों का ये शानदार प्रदर्शन पिछले महीने ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रिकॉर्ड तोड़ अभियान के बाद आया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: लवलीना हो, अंकुश हो या प्रवीण हो, बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज उन्होंने एक के बाद एक भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाए। मुक्केबाजी से चलते हैं अब कुश्ती की ओर, जहां सुजीत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय रेसलर सुजीत कलकल ने एशियाई खेलों के कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। रोमांचक फाइनल में सुजीत ने तजाकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदेव को 10-9 से हराया। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
3: फाइनल मुकाबले में सुजीत ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए कुश्ती में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया।

0: पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार वापसी करते हुए ये जीत हासिल की। मैच के ज्यादातर समय 23 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी 2-9 से पीछे चल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मैच के आखिरी पलों में लगातार 8 पॉइंट हासिल करके जबरदस्त वापसी की और कुलदीप को हराकर इस एशियन गेम्स में भारत के लिए रेसलिंग का पहला स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया। कलकल की ये जीत आईचे नागोया में उनके शानदार प्रदर्शन का नतीजा थी। इससे पहले भारतीय रेसलर ने अफगानिस्तान के सैयद उमर जजई के खिलाफ अपनी चुनौती शुरू की और शुरुआत में 0-3 से पिछड़ गए। इसके बाद कलकल ने पुश आउट और शोल्डर थ्रो से पॉइंट हासिल करके मैच का रुख बदल दिया और 5-3 की बढ़त बना ली। फिर उन्होंने एक और थ्रो और रोल से 4 और पॉइंट हासिल किए, जिससे उन्होंने 13-3 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत दर्ज की और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद कलकल ने ईरान के अब्बास इब्राहिम जादे सावत कोही के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और बिना कोई पॉइंट गवाए तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत हासिल की। सेमीफाइनल मैच उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें जापान के ओलंपिक चैंपियन कोतारो कियोका का सामना करना था। हालांकि कलकल पहले पीरियड के अंत में 0-2 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने वापसी करते हुए 3 पॉइंट हासिल किए, जबकि कियोका सिर्फ 1 पॉइंट ही बना पाए। मैच 3-3 से ड्रॉ पर खत्म हुआ, इसीलिए कलकल ने तय नियमों के आधार पर जीत हासिल की और रोमांचक फाइनल को भी अपने नाम कर लिया। स्पोर्ट्स का
1: आइए सुनते हैं जीत के बाद सुजीत ने क्या कुछ कहा।
2: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। देखो यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
1: मुक्केबाजी हो, कुश्ती हो और उसके बाद अब बात हॉकी पर, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक और शानदार प्रदर्शन किया और भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 44 साल का सूखा खत्म कर दिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
0: फाइनल मैच में भारतीय टीम ने शुरुआत से ही चीन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। मैच के 6th मिनट में बलजीत कौर को ग्रीन कार्ड मिला, लेकिन 10th मिनट में अपना 200वां इंटरनेशनल मैच खेल रही लाल रिमसी यामी ने बेहतरीन गोल दागते हुए भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। भारतीय टीम को इसके बाद अपनी बढ़त 2 गुना करने का सुनहरा मौका मिला, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर को टीम गोल में तब्दील नहीं कर सकी। हालांकि मजबूत डिफेंस के दम पर भारतीय टीम पहले क्वार्टर फाइनल में अपनी बढ़त को बनाए रखने में सफल रही। दूसरे क्वार्टर में चीन ने वापसी करने की कोशिश की और आक्रामक खेल दिखाया। चीन को जल्द ही पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन सविता पुनिया ने दमदार बचाव करते हुए चीन को बराबरी करने से रोक दिया। हालांकि इसके बावजूद चीन का आक्रामक खेल लगातार जारी रहा, लेकिन वह भारतीय टीम के मजबूत डिफेंस को नहीं भेद सके। तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी भारतीय टीम के डिफेंस ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और चीन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। तीसरे क्वार्टर में कप्तान सलीमा टेटे के चोटिल होने के बावजूद भारतीय टीम ने चीन को हावी होने का मौका नहीं दिया। चौथे क्वार्टर में सलीमा मैदान पर वापस लौटी और उनकी अगुवाई में टीम अपने दबदबे को कायम रखते हुए गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और श्रोताओं, आपको बताएं, भारतीय महिला हॉकी टीम ने आखिरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल 1982 में जीता था। वहीं 1998 में टीम ने सिल्वर और 2018 में भी फाइनल तक का सफर तय किया था। भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा। गोल्ड जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। और श्रोताओं, उधर भारतीय पुरुष टीम का सामना कल स्वर्ण पदक मुकाबले में मलेशिया से होगा, मतलब कल भी एक और स्वर्ण पदक की उम्मीदें होंगी। और अब बात तीरंदाजी पर। भारत की महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। भारतीय टीम की 10 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया पर यह ऐतिहासिक जीत है। महिला रिकर्व आर्चरी टीम का एशियन गेम्स इतिहास में यह पहला स्वर्ण पदक है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: इंडिया वुमेन्स गोल्ड, इंडिया हैज वन गोल्ड इन द वुमेन्स टीम रिकर्व इवेंट, अ फीट नेवर डन बिफोर, सेलिब्रेट दिस विन, बी इन दिस मोमेंट, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, फर्स्ट टाइम चैंपियंस, टू यंग
4: भारत की महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने फाइनल में मजबूत कोरियाई टीम को 5-3 से हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। दोनों टीम ने 54-54 का स्कोर करके सेट बराबर कर दिया और हर एक को एक पॉइंट मिला। कोरिया ने दूसरे सेट की शुरुआत 10-9 और 9 के स्कोर के साथ जोरदार तरीके से की। तीसरे सेट में कोरिया ने 8 के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर अगले दो शॉट में 10 और 9 के साथ वापसी की। अपने अगले 3 शॉट में कोरिया ने 3 बार 8 का स्कोर किया, जिससे भारत को सेट जीतने का एक मजबूत मौका मिला। इसके बाद भारत ने 8 के साथ शुरुआत की, फिर 9 के साथ और आखिर में कुमकुम ने 10 का स्कोर करके तीसरा सेट अपने नाम कर लिया, जिससे टीम 4-2 से आगे हो गई। चौथे सेट में कोरिया ने 2-9 के स्कोर से शुरुआत की, उसके बाद 10 का स्कोर किया। भारत ने 8-8 और फिर 9 के शॉट लगाए। इसके बाद कोरिया ने 8-9 और 9 के शॉट लगाए। कीर्ति ने 9 का शॉट लगाकर शुरुआत की और अंकिता ने 1 और 9 का शॉट लगाया, जिसके बाद कुमकुम ने 10 का स्कोर करके सेट बराबर कर दिया, जिससे 5-3 से जीत पक्की हो गई। कुमकुम मोहोद, अंकिता भक्त और कीर्ति शर्मा ने धैर्य के साथ साहसिक खेल का प्रदर्शन करते हुए भारत को पदक दिलाया। मनोज, स्पोर्ट्स कैन।
1: आइए सुनते हैं पदक विजेता अंकिता ने जीत के बाद क्या कुछ कहा।
5: हम लोग बहुत खुश है कि हम लोगों ने पहली बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इसी दिन के लिए पिछले 2-3 महीने से बहुत मेहनत की है। साई बहुत सपोर्ट करती है हम लोगों को।
1: भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने रजत पदक जीता। फाइनल में 9 बार की चैंपियन दक्षिण कोरियाई टीम ने भारत को हराया। भारत के नीरज चौहान, यशदीप भोगी और धीरज बोमदेवरा की टिकड़ी को दक्षिण कोरिया की टीम ने 1-5 से हराया। अब बात सेपक टैकरों पर। भारतीय पुरुष स्क्वाड्रन टीम ने एशियन गेम्स के सेपक टैकरों स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें जापान से 0-2 हार का सामना करना पड़ा। एशिया में ये भारत का सेपक टैकरों में 3रा पदक है। और अब बात सेलिंग पर। भारत की सेलर नेत्रा कुमानो ने महिलाओं की डिंगी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2 रेस की फाइनल सीरीज के बाद नेत्रा ने 14 पॉइंट के साथ फिनिश किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब बात क्रिकेट पर। एशियाई खेलों में कल भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का सामना स्वर्ण पदक मुकाबले में पाकिस्तान से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपने सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। Thank you.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया, उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश के संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्डन जैसे परिवार का गार्डन को समझना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए।
5: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गांव के उन लोगों तक पहुंचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बातों कर रहे हैं।
2: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत के राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के इडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवम्बर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी है। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी है। एक रिपोर्ट।
1: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 30 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर इंगम पामे और नंगपेबू मरिन माई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
2: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
3: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ की दुआओं से ये मेडल आया। वही सोच के उतरे थे मैट पे की भाई देश के लिए गोल्ड लाना है और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड देश के लिए। मैं देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
2: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
4: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से स्ट्रॉन्ग होके आना और जीतना हो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
2: महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरल और माही में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi praises brave pilot Smith Machar for saving hundreds of lives and foiling attempt to crash Israel-bound flight. Asserts Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. Commerce Minister Piyush Goyal says India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary. And in Asian Games, India won first women's hockey gold in 44 years. Wrestler Sujit Kalkal and boxers Parveen Hooda, Lovleen Borgohain and Ankush Pangal also clinched gold medals. India climbed to 5th position in overall medal standings, with tally rising to 76, including 16 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today spoke with

0: Captain Smith Mature over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, "Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others." He lauded Captain Mature for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पर इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। मैं तब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।

0: हाथों के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहते हैं और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाने का आजा आजा मेरे प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था याद है आपको? तो मुझे ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है, आंसुओं तक जाके ये आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ के प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेरे साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्यों बुढ़े, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं रस पड़ी, मैंने कहा नहीं तुम्हारी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एक ऐसी अभिनेत्री का जिक्र है जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय से पर्दे में एक चमक पैदा की, उसे रोशन किया। ये 2 दशकों तक सबसे चर्चित और हिंदी फिल्मों की सफलतम नायिका रही। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया।

प्रधानमंत्री आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। आशा पारेख की माताजी ने इन्हें शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए बहुत ही कम उम्र में भेजना शुरू कर दिया था और आपने कई गुरुओं से नृत्य सीखा जिसमें पंडित बंसीलाल भारती भी शामिल हैं। जहां तक आशा पारेख के फिल्मी करियर की शुरुआत की बात है तो आपने बेबी आशा पारेख के नाम से सन 1952 की बिनोद रॉय की फिल्म माँ से शुरुआत की। फिल्म लेने के पहले इस निर्देशक ने एक मंचीय कार्यक्रम में नृत्य करते देखा था और फिर एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा को फिल्म में लिया। फिर दोबारा 1954 की फिल्म बाप बेटी फिल्म के लिए भी बेबी आशा को आपने अनुबंधित किया था। बाद की फिल्मों की असफलता ने बेबी आशा को दुखी कर दिया। बाल कलाकार के रूप में आपने कुछ एक और फिल्में भी की जिसकी वजह से उनको स्कूली शिक्षा त्यागनी पड़ी। आशा पारेख की उम्र 16 रही होगी जब इन्होंने दोबारा अभिनय के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा आजमाने की सोची। पर सन 1959 की विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई में नायिका के रूप में आप नहीं चुनी गई। इनकी जगह अभिनेत्री अनिता ने वो भूमिका निभाई थी। आशा पारेख को फिल्मकार ने ये कहकर रिजेक्ट किया था कि इनमें स्टार मटेरियल नहीं है, जबकि 8 दिनों बाद ही निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख को हीरोइन के रूप में 1959 की फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ कास्ट किया और ये फिल्म सफल रही और आशा पारेख को

दिन लेके देखो की सफलता ने फिल्मकार नासिर हुसैन और आशा पारेख की जोड़ी बना दी, जिससे इन्होंने साथ साथ 6 फिल्में की जो काफी सफल रही। ये फिल्में हैं 1961 के दीवानम के साथ जब प्यार किसी से होता है।

0: फिर 1971 में आई आशा पारेख और जितेंद्र की ताहिर हुसैन द्वारा निर्मित, नासिर हुसैन द्वारा लिखित निर्देशित फिल्म कारवां, और फिर सन 1984 की मंजिल मंजिल में आशा पारेख ने एक कैमियो रोल किया था। लेकिन इन छह फिल्मों ने जहां नासिर हुसैन और आशा पारेख की फिल्मी केमिस्ट्री को सफल बनाया, वहीं हिंदी सिनेमा को भी कलात्मक ढंग से परिष्कृत किया, असरदार बनाया।
1: कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों से।

हिट फिल्मों की हिट नायिका, जिन्हें हम आशा पारेख कहते हैं, फिल्मों में स्टूडियो की शशधर मुखर्जी द्वारा निर्मित निर्देशित दिल देके देखो से फिल्म दर्शकों और समीक्षकों ने मान लिया कि अ स्टार इज बॉर्न। बात की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली फिल्मों ने इन्हें सर्वोत्कृष्ट हिट गर्ल के रूप में स्थापित किया। इसी नाम से आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी

बचपन से ही सीख रही नृत्य कला इनकी अभिनय ख्याति को देश विदेश में बढ़ाने में सहायक रही। अभिनय के अलावा आशा पारेख अपने सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए भी जानी जाती हैं। 1988 से 2001 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड की आप अध्यक्ष रही, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी आप संबद्ध रही और फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स टेक्नीशियन और एक्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बने संगठनों से भी आप जुड़ी रही। बाद के वर्षों में आप टीवी के कोरा कागज और पलाश के फूल जैसे धारावाहिक के निर्माता निर्देशक भी बनी। चलिए इन बातों के बाद अब फिर से चलते हैं हिट गर्ल की उन फिल्मों की ओर जिसमें आशा पारेख ने ग्लैमर गर्ल, उत्कृष्ट नृत्यांगना और टॉम बॉय जैसे किरदारों को बखूबी निभाया था।

1971 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कटी पतंग में आपने काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आशा पारेख की जिद्दी फिल्म भी काफी मशहूर रही और जिसमें ये गाना उनका काफी मशहूर रहा।

निर्देशकों ने कई बार आशा पारीख को अपनी फिल्म में कास्ट किया, जिसमें विजय आनंद और मोहन सहगल प्रमुख हैं। अपने हिंदी फिल्मी करियर की सफलता के दौर में आशा पारीख ने अपनी मातृभाषा गुजराती में भी फिल्में की, जिसमें 1963 की फिल्म अखंड सौभाग्यवती बड़ी हिट फिल्म थी। पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी आपने अभिनय किया। हिंदी की आम मिलो सजना इनकी कई लोकप्रिय फिल्मों में से एक रही।

मौजूद दिन 1966 की, 1969 की चिराग, 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में आपके अभिनय को काफी सराहा गया। फिल्म भरोसा, आए दिन बहार के, उपकार, शिकार, कन्यादान, आया सावन, झूम के जैसी 60 के दशक की फिल्में आशा पारेख के अभिनय से सजी थी।

मेरा गांव मेरा देश 1971 की एक्शन ड्रामा फिल्म जिसे निर्देशित किया था राज खोसला ने, नायक धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म में जहां आशा पारेख अंजू बनी थी, वहीं विनोद खन्ना ने डाकू जब्बर सिंह का रोल अदा किया था।

फिल्म नादान, समाधि, राखी और हथकड़ी, हीरा, अनजान राहें, रानी और लाल परी, जख्मी, उधार का सिंदूर जैसी फिल्मों के साथ साथ 1970 के दशक में आई आशा पारेख अभिनीत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की ने एक कुलीन ठाकुर राजनाथ सिंह चौहान के प्रेम तुलसी का किरदार आपने निभाया था, जिसमें राजनाथ के बेटे अजय को जन्म देने के बाद तुलसी अपना जीवन राजनाथ की पत्नी के लिए बलिदान

0: आज का फोन पर ये कार्यक्रम केंद्रित था आशा पारेख पर, आली खुर्सर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज की फनकार।

0: इंतजार नहीं ना, दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इजराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
3: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
2: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के कैनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खुल गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today spoke with Captain Smith Mitchell over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Mitchell for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: और आपकी सुईबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई। और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पर इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। मैं तब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
1: On Wednesday, Captain Mitchell got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE.

बार बार सोचते हैं कि तुम्हें क्या लिख दें, कैसे लिख दें, कहां से शुरू करें। दिल में तुम्हारे लिए इतना सारा प्यार है कि कोई भी शब्दों से पूरा ही नहीं कह पाएगा। मन करता है कि इस खत में अपना पूरा दिल ही रख दें, तुम्हें बता दें कि तुम्हारे बिना हर दिन कितना अधूरा है, हर शाम कितनी बेचैन है, हर रात कितनी खाली है। सिर्फ तुम्हारा नाम ही लबों पर हर पल रहता है। इस खालीपन में जब भी कलम चलाने लगते हैं तो सारे शब्द चुप्पी की चुनर ओढ़ लेते हैं और सिर्फ लिख पाते हैं तुम्हारा।

पर कलम पता नहीं क्या हो जाता है इसे, साथ ही नहीं देती। फिर बस खत को देखते हैं और मन ही मन तुमसे बातें करते रहते हैं। शायद प्यार ऐसा ही होता है जहां सबसे ज्यादा कहने वाला दिल ही सबसे ज्यादा चुप हो जाता है। अब दिल में तुम जो रहने लगे हो तो आंखें खुली हो या हो बंद, सिर्फ तुम्हें देखते हैं, तुम्हें पूछते हैं।

जानती हो, अब तो दुनिया की हर छोटी सी खुशी भी तुमसे जुड़ गई है। कोई भी बात हो, तुम्हारा जिक्र आते ही मन खिलखिला उठता है। कोई भी गीत सुनते हैं तो तुम्हारी याद उस गीत के साथ जुड़कर उसे और भी खूबसूरत बना देती है। कहीं ठंडी हवा चलती है तो लगता है जैसे तुम्हारा स्पर्श पास से गुजरा है। चांद में भी अब तुम ही नजर आते हो। तुम्हें ऐसे सोचते हुए होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कई बार लगता है कि काश तुम सामने होते तो शायद कुछ कह नहीं पाते हो, बस तुम्हें देखते ही रहते।

कितना प्यारा है ये प्यार का रिश्ता। इसमें खुशी भी होती है, दर्द भी होता है, दूरियां होती हैं तो पास होने का खूबसूरत एहसास भी होता है, शिकवे शिकायतें भी होती हैं तो माफी का खास अंदाज भी होता है, इंतजार भी होता है तो मिलने की गुदगुदी भी होती है। एक अदृश्य डोर से बंधी दो दिल एक अटूट विश्वास के रिश्ते में अपना संसार बसाने लगते हैं। इसलिए कभी अगर तुम्हें कोई खाली खत मिले तो उसे खाली मत समझ बैठना। समझ लेना जो तुम्हें लिख नहीं पाए हम उस खाली खत के हर खाली कोने में प्यार लिखा पाओगे, हर धड़कन धड़कती पाओगे, हमारा इंतजार का हर लम्हा पाओगे और सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हारा

0: गीत का आज का सफर आपने तय किया पूजा नरानिया के साथ। त्वया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: Yana Kashwari Tura dan Soman program aku atani bayi yang bunaha. Kena so basa kantikon macam baksa walnam. Yana Kashwani Tura Jai Hind.